0: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. कैसे आप?
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूँ. फिर आप कैसे हैं?
0: बढ़िया भाई. आप आए, बाहर आ गया और काफी नॉलेज लेकर आए हैं. वैसे तो हम हमेशा मिलते हैं, कभी दोस्त की तरह, कभी यू नो स्टेज बडीज की तरह, पर आज यहाँ पर आप एक स्पेशल मिशन में आए हो. और वो स्पेशल मिशन क्या है?
1: सो आज स्पेशल मिशन है हमारा, हमारे लोगों तक ये बात पहुंचानी कि वी आर आई द इंडियन सोशल एंड कल्चरल क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग एन अंताक्षरी फॉर द कम्युनिटी. सो हम लोग एक अंताक्षरी खेलने वाले हैं आप सब लोगों के साथ. आप सब लोग को निमंत्रण है, आइए ज्वाइन करिए एट द एल्डर्स गेट सेंटर ऑन 23rd of May शाम 5 बजे से. सो हम वहाँ सब खेलेंगे. There'll be fun, there'll be games, there'll be prizes, and you guys are most welcome to join.
0: जी हाँ, ये अंताक्षरी का एक एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है और ये खास तौर पर से वैसे तो इस सभी के लिए है, पर आई थिंक जो हमारे साथ 80s, 90s के जो संगीत प्रेमी हैं, they would love it to extend. So please do tell us more about that. पर इसमें songs, singing, हमारे लोगों को गाना इतना पसंद है. It's so easy for them to sing anywhere. खाना बनाते में गाना गाना, गाड़ी चलाते में गाना गाना, नहाते में गाना गाना, संडास में भी गाना गाना,
1: इसके लिए भी गाना है.
0: हर जगह पे गाना है. तो यही करना है आपको और गाना है. और समझिए जब यहाँ पर लोग आएंगे, what can they expect? क्या क्या देख सकते हैं उस दिन?
1: So, उस दिन एक तो ये कि एक तो माहौल इतना बढ़िया होगा, शाम होगी, सारे संगीत में होंगे.

0: पुराने गाने होंगे, साथ साथ थोड़े बहुत गेम्स होंगे, तो पूरी एक कम्युनिटी साथ में आएगी एंड वी विल बी एबल टू हैव सम फन एंड लाइट नाइट. पर उसके साथ साथ एक जब शाम थोड़े आगे की तरफ जाएगी तो हम लोग एक छोटा सा इवेंट ओपन डेक रखेंगे जहाँ पे पीपल कैन कम एंड डांस एज वेल टुगेदर.
1: जी
0: देर विल बी फूड, देर विल बी मोर गेटिंग टुगेदर. सो एक अच्छा जरिया है लोगों के बीच में प्यार बढ़ाने का, साथ आने का और सब में खुशियाँ मिल बांट के साथ बिताने का.
1: वेल एक्चुअली जब समंत ये बोल रहे हैं डीजे जेबी, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आईएससीसी, ठीक है. और आज मुझे ना आईएससीसी की तरफ से मुझे बहुत खुशी हो रहा है, तो मुझे कुछ फ्री देने का मन कर रहा है.
2: फ्री देने का
1: हाँ,
2: मन हो रहा
1: क्या
2: है
1: जेबी,
2: तुमको?
1: आप आके, आप भी, आप तो यू रीड माई माइंड, आप हमें बताइए कि आज हम लोगों को क्या फ्री दे सकते हैं.
2: ये अंताक्षरी जो आईएससीसी लेकर आ रही है, दिस इज गोल्डन एरा अंताक्षरी, जिसका मतलब है कि आपको तैयार होके आना है हमारे पुराने हीरो हीरोइंस की तरह, शायद ब्लैक एंड व्हाइट में ही आ जाइए और डिफरेंट टीम्स हमारे साथ, आप सब तोड़फोड़ी हो रहा
1: थोड़ो थोड़ो भाई, थोड़ो थोड़ो
2: डिफरेंट
1: थोड़ो
2: टीम्स हमारे साथ जुड़ गए. एक्चुअली चार टीम ऑलरेडी बन गए हैं, चार टीम एंड ईच टीम कंसिस्ट ऑफ थ्री पीपल. सो चार टीम ऑलरेडी बन गए, विच मीन्स के 12 लोग हमारे साथ
0: बिल्कुल
2: ऑलरेडी
0: ऑलरेडी
2: जुड़
0: जुड़
2: गए
0: चुके हैं,
2: हैं,
0: इवन अभी और जुड़ रहे हैं साथ में.
2: ऑलरेडी जुड़ रहे हैं. अब हमारे पास एक ऑफर है रेडियो केजे लोकल के लिसनर्स के लिए. ये अगर एनरोल होना है, ऑब्वियसली यू पे अ लिटिल बिट ऑफ फीस, पर आज अगर आप जुड़ रहे हैं विथ थ्री पीपल, जैसे आप और आपके दो दोस्त साथ में जुड़ रहे हैं, इट्स फ्री. यू कैन एंटर इनटू दिस अंताक्षरी कॉम्पिटिशन थ्रू रेडियो केजे लोकल.
1: वाओ देयर वी गो भाई, फ्री चीज़ें किसको. जिबी जिबी जिबी वो वापस जा, वापस आ जिबी जी, इतना फ्री. आपको पता है आईएससीसी जब भी कुछ, वैसे मैं क्विकली मैसेजेस पढ़ दो. सूर्या जी कह रहे हैं समथ हैज गॉट अ गुड वॉइस और वो अच्छा गीत भी गाते हैं, विल ही अ वेरी सून फ्रॉम हिम.
2: वैसे एक पर्सनल मैसेज आया था आपके फोन में ये पूछकर, आप बाद में चेक कर लेना इफ समर्थ जी इज सिंगल.
1: अच्छा
2: हाँ,
1: ओके चलो हम अभी अभी अभी पूछ लेंगे. और किसने किया मुझे पता है किसने किया होगा. चलो उमा जी और आदित्य जी आप भी हैं, जीबी जी आज तोड़फोड़ कर रहे हैं, तोड़फोड़ के मन से आए हैं. और पीयूष रस्तोगी जी बोल रहे हैं जीबी इज द विनर. भाई ये तो हमारी दिल जीत चुकी है, जो काम सालों तक क्राइसिस में किसी ने नहीं किया इन्होंने किया है, तो फिर एक अंताक्षरी क्या है. और ओके जीबी जी, आईसीसी ठीक है, दिवाली पिछले कितने सालों से बिता हुआ, करेजियस वेरी गुड लुकिंग शाहरुख खान के वॉइस वाले प्रेसिडेंट मिस्टर मोंटी पार्टी
2: जी,
1: और उनकी बीबी जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है कि हम सबको फटती है, जो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है उनकी बीबी की हम सबको फटती है. उनके साथ एक प्यारी स्माइल वाली सूर्या ठीक है, और फिर हम दोनों
2: हाँ,
1: आप तो है
2: फिर ना,
1: हम भी काफी गुड लुकिंग है
2: जी,
1: ठीक है
2: ठीक है ओके
1: ओके okay, चलो फिर अभी हमारे नए मेंबर समझ जी भी आ गए, सुधीर जी भी आ गए. बट जी भी हमने ये दो तो फ्री दिया है ठीक है, हम सोच रहे हैं कुछ और भी फ्री कर देते.
2: आप क्या फ्री कर रहे हो अब
1: यार, नए बंदे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, पेरेंट्स घर पे बैठ के क्या करेंगे, वो भी टीम लाएंगे
2: डेफिनेटली.
1: पैसे उनसे, अंकल अंटिया से हम कैसे पैसे ले सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक?
2: वेरी गुड आइडिया क्रिश जी. सो आईएससीसी जो लेकर आ रही है गोल्डन एरा अंताक्षरी, अंकल आंटी आप घर पर मत बैठो. अभी हाईसॉ के हिरल की मम्मी भी हमारे साथ जुड़ी है, तो मम्मी पापा आप लोग घर पे मत बैठो, चलो अंताक्षरी देखने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जब वहां पर अंताक्षरी हो रहा है, वी वुड लव यू गाइस टू कम एंड ज्वाइन अस एंड विटनेस दिस अमेजिंग इवेंट एज वेल.
1: जी हाँ, और इसमें समझिए इट्स नॉट कि आई एम गोना कम देयर और मुझे जीतना है जीतना है. आप वो टैग लेकर जा सकते हो कि 26 में, मई 23 में, मैं इज इट मई 26 व्हाट डेट इज, मई
0: 23
1: में,
0: यस
1: उस डेट को हम आईसीसी के साथ हमने एक अंताक्षरी में पार्ट लिया.
0: बिल्कुल
1: यू नो ये टेक तो आप लेकर ये ले जा सकते हो.
0: एब्सोल्युटली
1: जी हाँ बिल्कुल. और वैसे समझ जी यू विल बी डूइंग अ डीजे दैट डे टू और इट विल बी, इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग. और जीबी जी आप भी वहां पर होंगे, बाकी आईएससीसी मेंबर्स टीम भी होंगे. आई थिंक जहां तक मुझे पता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर किसी को पता होगा, घर पे बैठने की बात हम नहीं करें, पर क्राइस्टचर्च में ऑफिशियल अंताक्षरी पहली बार हो रहा है, विच इज गोना बी देयर.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप कृषि बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है. और जैसा जीबी जी ने बताया कि वी शुड एनकरेज पेरेंट्स, डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स जो आ रहे हैं घर पर हैं, आए इंजॉय करें, देखें हमारी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, कितना बॉन्ड है और कितना प्यार है हम सबके बीच में.
1: समझ वैसे जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, यू दिस इज आपका पहला साल है एज अ मेंबर, व्हाट मेड यू ज्वाइन आईसीसी?
0: So I saw ISCC as a, not just as a platform, but also as an opportunity to actually give back to the community. I am a firm believer of doing things for the society. So ye, I think ek zariya hai जिसके थ्रू मैं कम्युनिटी बिल्डिंग में हेल्प कर सकता हूँ।

0: एक कॉज आप कह सकते हैं कि सबको साथ लेके चलना मुझे बहुत पसंद है, तो वो एक जरिया हो जाता है कि हाँ हम सबको साथ लेके चल सकते हैं और खुशियाँ बांट सकते हैं।
1: खाने का कोई प्रबंध है वहां पे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे खाने का भी प्रबंध है, आप आइए वहाँ पे खाना आपको मिलेगा, वहाँ पे जलपान की पूरी व्यवस्था है।
1: जलपान एंड जो खाना है वहां पर, हमारे अपने MBA फ्यूजन मंदार जी है वो कर रहे हैं, तो उनका अगर खाना भी आपको एंजॉय करना है फ्रॉम MBA फ्यूजन, आ जाइए. ये हो रहा है एल्डर्स गेट से 23rd of May,
0: 23rd में
1: एंड टाइमिंग क्या है समर जी?
0: टाइमिंग है शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक।
2: ओके समर जी, आपसे एक और सवाल है। आज जैसे आई हैव बीन पार्ट ऑफ ICC फॉर अ व्हाइल, GBS, पर आप आए हो, यू हैव वॉच्ड ICC फॉर अ व्हाइल, व्हाट डू यू थिंक द विजन इज जनरली? एवरी अभी रिसेंटली ICC ने दे डिड एनजेक डे, दे आर डूइंग दिस सेकंड इनिंग्स वो कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक उनका विजन है?
0: सो द विजन बेसिकली इज अगेन बिल्डिंग द कम्युनिटी टुगेदर, of course not just a specific community but strengthening the whole community together. I think any society comes builds stronger base with when the people come together, and that's what we need at this point of time. We have been going through such struggles throughout these different difficult phases when there's so much uncertainty in the current circumstances, and I think jab hum sab saath honge, sab ek dusre ka support karenge, एक अच्छा माहौल बनता है, एक अच्छी सोसाइटी बनती है, एक अच्छा वातावरण बनता है जहाँ पे सिर्फ हम नहीं, हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी एक खुशी से रह सके और वो एनवायरनमेंट उन्हें मिले कि वो फील करे कि हाँ हम यहाँ पे बिलोंग करें।
2: डेफिनेटली,
1: जैसे आई लव दैट वर्ड वातावरण।
2: हम क्या करते हैं कि रेडियो कैजे पे हम हमारे जो लिसनर्स, इनको हम डिसअपॉइंट करना पसंद नहीं करते, तो हाँ रिक्वेस्ट आया है कि यू नो हमने और जीबी ने तो अपना जो थोड़ा सा टैलेंट था दिखा दिया,
1: हमने तो बहुत है।
2: अभी आपकी पारी है, कोई भी गीत 2-3 लाइन हो जाए कि लोगों को ये फील हो कि यार जब एक रेडियो पे रेडियो जो कि बात कर सकता है, यू नो क्राइस्टचर्च या न्यूजीलैंड के बेस्ट फीमेल MC कर सकती है, तो एक डीजे गा सकता है, जब ये सब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? फ्यू लाइंस फ्रॉम यू।
1: सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट टू यू अ सॉन्ग फ्रॉम डीजे बॉटनिक्स।

0: इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले
1: क्या बात है, क्या
0: I'm so
1: ले
0: sorry
1: ले जाएंगे, लग जा
0: guys.
1: गले, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे.
2: जी मुझे एक सवाल आया था सबत के लिए, आप फिर से पूछना चाहोगे?
1: हाँ, आई डोंट नो सोशल पर्सनली मैसेज किया है उनको, हम पूछ के बता देंगे है कि नहीं. पर जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, एक और बार सबको एक इनवाइट आपकी तरफ से फॉर अंताक्षरी.
0: बिल्कुल, आप सभी को निमंत्रण है, आप आइए हमारे साथ जुड़िए. दिनांक 23 मई शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक अंताक्षरी में, द गोल्डन एरा अंताक्षरी, जहाँ पे खूब सारे गाने होंगे, खूब सारा मजा होगा और खूब सारे गेम्स होंगे. और ये स्पेशली दिस इनवाइट गोज फॉर आवर पेरेंट्स, इफ दे कैन कम जॉइन अस, इट बी एन वंडरफुल टाइम. थैंक यू.
2: वेल सेड.
1: आल्सो प्राइजेस भी है, बेस्ट ड्रेस्ड कैट.
0: एब्सोल्युटली बेस्ट, यस प्राइजेस.
2: So what are the prizes? Do you want to talk about it again?
1: So, jitna hume pata hai, best dressed male, female ke liye prizes hai. Baki to Krish ji aur hum dekh lenge aur kuch prizes dena hai ya nahi.
2: Ji haan, kuch hoga to hum aise hi wahan pe us din hum prize announce kar denge. Baad mein Anshu ji se daat padegi, wo alag baat hai. Chalo. So I think jaise Samaj ji ne kaha hai ki ye ek exciting point hai, but ek sawal to humne itne duniya bhar ke sawal kiya hai, par ek sawal humne puchna bhool hi gaye. Kya ये पब्लिक के लिए ओपन है?
0: हाँ जी बिल्कुल, ये पब्लिक के लिए ओपन है. ये किसी एक,
2: इट्स नॉट कि सिर्फ ग्रुप को आना नहीं है, आप आकर देख भी सकते हैं.
0: आप आके देख भी सकते हैं, आप आके वहाँ पे सिर्फ उस वातावरण और जब उस
2: एनवायरनमेंट
0: आपने मुंह पे मतलब वो वर्ड फिक्स हो गया.
2: तो
0: यू कैन बी पार्ट ऑफ द इवेंट, यू डोंट हैव टू बी जस्ट बीइंग प्लेइंग द गेम्स, यू कैन जस्ट वॉच एंड एंजॉय.

0: music and enjoy the vibe as well.
1: I think it's such a brilliant idea. You come with your families there. अगर आप अपना group लेकर आ सकते हैं, जैसे जो लोग आज हमारे साथ हैं, give us a personal message. आपका group free में register हो जाएगा. इसके साथ साथ अगर आपके घर पे over 50s है, आपके माता पिता घर पे आपको गाना गा गा कर सुना सुना कर पका रहे हैं, भाई उनको वहाँ आकर लेकर आना, सबके सामने गाएंगे. और जिसने भी पूछा था कि is DJ Botnik single or not, आप उस दिन आकर यह डायरेक्ट पूछ लेना. तो गाइस, दैट्स आवर शो फॉर टुडे. थैंक यू जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे, ऑनलाइन जुड़े थे. जीबी जी, आप वो माइक पकड़ लीजिए. और थैंक यू सो मच जीबी. अगर कोई भी और मैसेज हो, इफ यू कैन क्विकली गो ओवर दैट बिफोर वी साइन ऑफ.
2: काफी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं. प्रदीप करण जी, कैसे हैं आप? ऑल द वे फ्रॉम फिजी में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, कहाँ हो प्रदीप जी, जरा बताइए. राधा पिल्लई जी, आपका भी स्वागत करना चाहते हैं. धर्मेंद्र कुमार जी, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी रेडियो के जे लोकल पर स्वागत करना चाहते हैं. अंशु जी फ्रॉम ISCC इज सेइंग डू कम एंड सपोर्ट.
1: डेफिनेटली गाइस, दैट्स इट. हमारा फ्राइडे का जो शो है, इसे हम यहीं पर अलविदा कहते हैं. हम आपसे मिलेंगे संडे को. संडे को वैसे तो हमारा जो हॉरर स्टोरी है, वी गोना डू इट टुडे, बट वी डू इट ऑन संडे. इसके साथ साथ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए. आखिरी गीत में हम आप सभी को याद करते हैं. खास तौर पर से ये गीत हम डेडिकेट करना चाहेंगे आरजे जीबी को. और दिस इज आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ विद अ वेरी ब्यूटीफुल, विद अ वेरी गॉर्जियस
2: आरजे जीबी. बाय.